0: सलाम नमस्ते और वनकम। मैं मेघा पारेक बीए सोशियोलॉजी से अपने साथियों के साथ आपसे गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बातचीत करना चाहेंगे। गणतंत्र दिवस क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसे हम हर साल क्यों मनाते हैं, इसकी बातचीत हम आपके साथ आज करेंगे। अब जेनिफर हमें इस महत्व दिन के बारे में प्रकाशित करेगी।
1: गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1940 को भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्रता गणराज्य बनने और देश के संक्रमण को पूरा करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुनाया गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व में काफी सारे परेड और पुरस्कार वितरण होती है।
0: आप सुन रहे हैं MOP समुदाय रेडियो 107.8। हमारा रेडियो, हमारा समुदाय, हमारा अभिमान। स्वर्णप्रिया अब हमें भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताएगी।
2: भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक जीवित सरकारी तंत्र काम करते हैं जो सत्यती साधन है। जब यह शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्य को परिभाषित तांचा नीचे देते हैं। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश के सबसे लंबे समय तक लिखती संविधान है। राष्ट्र के संविधान के आधार पर संचालित है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया है और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। भारत गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को संविधान के लागू होने के मान्यता है। संविधान उनके बीच बिरादरी को बढ़ावा देने के लिए अपने न्याय सम्मानत और स्वतंत्रता के नागरिकों और समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
0: आप सुन रहे हैं MOP समुदाय रेडियो 107.8। हमारा रेडियो, हमारा समुदाय, हमारा अभिमान। अब आरुषि द्वारा एक कविता।
3: हमसे पहले हमेशा आएगा हमारा वतन, करने पड़े इसके लिए कितने ही जतन, करेंगे रक्षा इसकी हर दम, हमें है हमारे तिरंगे की कसम। नमन करते हैं उन जवानों का, नमन करते हैं उन जवानों का, देश का स्वाभिमान परिणाम है उनके बलिदानों का। बहा दिया अपने खून का एक एक कतरा, बहा दिया अपने खून का एक एक कतरा, ताकि देश को ना हो खतरा। सपना था अंबेडकर साहब का, बनाएंगे ऐसा संविधान जिस पर देश को हो अभिमान। मगर आज नहीं मिलता हर किसी को न्याय, कौन करे उन लोगों का सहाय। देश भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है, अपमान है उसका जो वफादारी निभा गया है। चाहिए एक ऐसा कानून, चाहिए एक ऐसा कानून, टूटे ना किसी का जुनून, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। हर नागरिक भारतीय होने पर गर्व करेगा, हर नागरिक भारतीय होने पर गर्व करेगा।
0: आप सुन रहे हैं MOP समुदाय रेडियो 107.8। हमारा रेडियो, हमारा समुदाय, हमारा अभिमान। अब इस साल दिल्ली में हुए परेड की तैयारी के बारे में रोशनी हमें बताएगी।
2: गणतंत्र दिवस के पहले शनिवार को राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। पहली बार कोई विदेशी फौज की टुकड़ी इसमें हिस्सा लिए थे, फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी। इस बार सेना का अहम डॉग स्क्वाड भी परेड का हिस्सा था और राज्यों की सांस्कृतिक चटा थी। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में 123 फ्रांसीसी सैनिकों की एक टुकड़ी वायुसेना के विमानों के हैरत अंगेज करतब, देश की संस्कृति और प्रगति का दर्शाने वाली झांकियां और तीन सेनाओं की महिला टुकड़ियां आदि अतिथियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। इस साल गणतंत्र दिवस का आधिकारिक कार्यक्रम 90 मिनट का था। पारंपरिक रूप से यह कार्यक्रम 115 मिनट का होता है, लेकिन इस बार इससे 25 मिनट की कटौती की गई थी। राजपथ पर शनिवार के संपन्न ड्रेस रिहर्सल में सड़सेवे गणतंत्र दिवस परेड की भव्यता दिखी। गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में पहली बार कोई विदेशी टुकड़ी शामिल हुए। इस बार राजपथ पर 123 फ्रांसीसी सैनिकों की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किए थे। इस बार फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद मुख्य अतिथि थे।
0: हमारे प्रिय जनतागण, यह न भूले कि देश को गौरवशील गणतंत्र देश बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें याद करके भावांजलि देने का पर्व है 26 जनवरी। मेघना अब हमें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बारे में बताएगी। आप सुन रहे हैं MOP समुदाय रेडियो 107.8। हमारा रेडियो, हमारा समुदाय, हमारा अभिमान।
4: राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2015 तीन लड़कियों और 22 लड़कों सहित कुल 25 बहादुर बच्चों को दिए गए। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 26 साल के मोहम्मद यूनिस को अन्ना वीर पदक से सम्मानित किया। यूनिस ने चेन्नई के बाढ़ के समय करीब 2100 लोगों को बचाया। रिया चौधरी को मरणोपरांत बापू गौदानी पुरस्कार दिए गए। 10 मई 2014 को कुछ बदमाश जबरदस्ती उनके घर पहुंच रिया के पिता को मारने लगे। जब उन पर गोली चलाई गई, तब रिया बीच में आकर अपने प्राण त्याग दिया और अपने पिता को बचाया। गौरव कुमार भारती को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरव कुमार भारती को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरव के दो मित्र विकास और देव सरयू नदी में डूब रहे थे। गौरव ने अपनी प्राणों की आहुति देकर उनकी जान बचाई। जील जितेंद्र मराठे को राष्ट्रीय बाल वीरता का पुरस्कार दिया गया। इस 13 साल की लड़की ने अपने दोस्तों को बस दुर्घटना से बचाया और अपनी अध्यापिका के फोन से पुलिस तथा एम्बुलेंस को संदेश भेजकर कई बच्चों को बचाया। रीपा दास को राष्ट्रीय बाल वीरता का पुरस्कार दिया गया। इस 7 साल की लड़की ने अपने 1 साल के भाई को आग से बचाया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वालों में यह सबसे छोटी है। गुंजन को राष्ट्रीय बाल वीरता का पुरस्कार दिया गया। कुछ बदमाशों ने गुंजन और उसकी सहेलियों को अगवा कर ले जा रहे थे। गुंजन ने वीरता से अपनी सहेली को बचाया।
0: आशा करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया। फिर मुलाकात जल्दी होगी। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने भारत पर गर्व करते रहिए। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं MOP समुदाय रेडियो 107.8। हमारा रेडियो, हमारा समुदाय, हमारा